0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: नजर उन पर तो अताएं होंगी ही, अच्छों का तो हाल अच्छा होगा, सरकार करम हम पर न किया तो हम जैसों का क्या हो।
1: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: On Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
3: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644।
4: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
5: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
5: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
3: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
3: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
5: बालियां, अंगूठियां और हार,
3: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
3: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
3: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
6: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
8: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
8: मैनिंगम सुपर स्टोर,
9: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
2: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
2: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
2: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
4: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
4: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
2: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
4: UK।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
6: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
6: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: कि मुझे दिल पे फिर बुलाए

You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: 01274317644.
1: For quality, value, style and security, your number one choice, first choice, Windows Yorkshire.
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
0: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
0: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
0: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
2: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
2: बालियां, अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
2: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
2: आपकी शान
0: हमारी आन,
2: क्वालिटी की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, PD95ER, 01274491442।
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
0: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

ने गया, मलका ने गया, धरती ने गया, पलका ने गया, पूरा ने गया, मलका ने गया, धरती ने गया, पलका ने गया।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा लजीज 01243764।
8: क्वालिटी, यूज, सिक्योरिटी, नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा है कि वाह वाह ही हो जाए।

0: catering services.uk.
1: दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
2: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
2: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
2: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
2: आपकी शान
1: हमारी आन,
2: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, PD9 5ER 01274491442,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
2: बस ट्रक फोकलिफ्ट
3: टैक्सी लाइसेंस,
2: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर,
2: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
1: 33 Wetley Lane, Bradford 01274201679.
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
5: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
5: मैनिंगम सुपर स्टोर,
6: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
2: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is... Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की 1555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार।

0: automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
1: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 अरुली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
5: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रेडफोर्ड 9627229627
4: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 अथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान,
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा, पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर गुजारा।
7: अरे सेफ पे जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब सिखाने।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा, पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे
9: DSA ऑडिट।

0: चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रून्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पहल सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस योर चॉइस। Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274300।
11: बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46

0: Carlisle Road, Bradford, BD8 8AX, Phone Bradford 49555. हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर.
1: मैनिंगम सुपर स्टोर.
2: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन, ब्रेडफोर्ड,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229627222।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice.
7: Open 7 days, 10 till 6, free delivery all over West Yorkshire. Love Furniture, Carlisle Road, Bradford, opposite Barclays Bank, Pond, Bradford, 9627229627222.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio. Bradford Asian Radio, our voice, your choice.

मौलवी साहब ने कराम खूबसूरत सा आपने गीत सुना, उम्मीद तो करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। बस हमने जैसा कि आपसे कहा कि कोशिश होगी कि अच्छे अच्छे गीत आपके लिए पेश किए जाएं, और फिर आपकी फरमाइश है तो हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, हमें बताइएगा, फिर हम आपके लिए वो भी पेश करेंगे। और प्रोग्राम में शिरकत की जनाब तारिक भट्ट साहब, आपने बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी नवाजिश, तहे दिल से आपके मशकूर व ममनून। आपने कहा जी इंतज़ार होता है और आप काम छोड़ के साइड पर गाड़ी करके तो फ़ोन कहते हैं कि पहले हो जाए बातचीत सलाम दुआ, उसके बाद फिर आप काम काज को शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी

साथ साथ रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। तो तारिक भट्ट साहब, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, इन इज्जतों को, इन ये जो रिश्ते होते हैं इनको सलामत रखे, कायम दायम रखे। दुआओं में इसी तरह से आप अपनी पुरखलूस दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। ये दुआएं जो होती है ना, ये सामीने कराम, वो एक बात याद आ गई खैर अशफाक अहमद साहब की थी कि दुआएं दी नहीं जाती, ली जाती हैं। अब ये ली किस तरह से जाती हैं, देखिए आप कहते तो वाकई हैं, बहुत से लोगों से हम कहते हैं कि जी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। वो इसलिए कहा जाता है कि हमें इल्म नहीं होता कि किसकी दुआ कब कबूल हो जाए, इसलिए कि आप किसी की नीयत को नहीं जानते, आप बिल्कुल नहीं जानते कौन कितना अच्छा है, कौन उस मालिक उस खालिक के कितना करीब है। तो आप सबसे कहते हैं, और ये अच्छी बात है कि हम दूसरों को अपने से एक लिहाज से ना बरतर समझ रहे होते हैं जब हम कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा हकीकतन। वरना तो जाहिर है इंसान अपने लिए जो दुआ खुद कर सकता है, जो खुद अपने लिए दिल से मांग सकता है, वो दूसरा तो इस तरह से नहीं मांग सकता। हमारा एक वैसे ज़ाती ख्याल है, क्योंकि हम मिसाल उसी तरह दिया करते हैं कि अगर आपके सर में दर्द है, आपके तकलीफ़ है कोई जिस्मानी या जहनी या कोई और परेशानी है, तो जिस दुख से, जिस तकलीफ़ से, जिस आजिज़ी से आप दुआ मांगेंगे, दूसरा शख्स उस तकलीफ़ को उस तरह नहीं समझ सकता। तो हो सकता है वो, जाहिर है जो दिल से मांगी हुई दुआ होती है ना, वो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करते हैं। मुखलसी की दुआ भी कबूल करते हैं, ध्यान से मांगी हुई दुआ को कबूल किया जाता है। हाँ, जो ऐसे ही राह चलते, ऐसे ही आगे पीछे लफाजी कर दी जाए, दुआ मांग दी जाए, तो वो फिर अल्लाह ताला उसको गौर से नहीं सुनते, उस पे तवज्जो भी इतनी शायद नहीं देते। तो दुआएं ली कैसे जाती हैं कि जब आप किसी को इतनी इज्जत देते हैं, किसी का एहतराम करते हैं, किसी के लिए आप इतनी मुखलिसी के साथ उसको याद करते हैं, तकरीम से नवाजते हैं, तो जाहिर है फिर दूसरे शख्स के दिल से भी आपके लिए दुआ निकलेगी ना। इंसान अगर ज़र्फ़ वाला है, अगर खुदा ना खास्ता कम ज़र्फ़ कोई शख्स है, तो फिर उसको इज्जत रास नहीं आती। ये थोड़ा सा आप भी इस बारे में देखिएगा, आपने देखा होगा, लोगों ने सोचा होगा इस बारे में, और शायद गुजरी भी हो, क्योंकि हर शख्स एक जैसा नहीं होता। दुनिया में हर शख्स, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, आम सी बात है, इसी तरह सब लोग बराबर नहीं होते। किसी को आप थोड़ी सी इज्जत देते हैं, वो आपको उससे डबल इज्जत और एहतराम से पेश आता है, क्योंकि वो उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, वो उसको उसकी वैल्यू का पता होता है, एहसास होता है कि हाँ जी, अगर दूसरा शख्स आपको बिला किसी वजह के इज्जत दे रहा है, एहतराम कर रहा है, तकरीम से नवाज रहा है, तो फिर लाजिमन वो इंसान जो है उसकी कदर करता है। लेकिन कम सर्फ अगर कोई शख्स हो, वो बस उस इज्जत को, उस तौकीर को, उस एहतराम को वो समझता है कि ये हमारा हक है, अगर फलाने कर दी अगर तारीफ तो क्या हो गया, हम तो इसी काबिल थे। तो दो चीज़ें फिर उसमें आ जाती हैं, एक तो इंसान में गरूर और तकब्बुर पैदा होता है, पहली बात, और दूसरी बात ये होती है कि वो जो कमज़र्फ़ इंसान है ना, वो उनको अपना हक समझ के जब करता है, तो फिर वो दूसरे शख्स की इज्जत और तौकीद नहीं करता, वो बस अपने ही आप में होता है, लाइक सेल्फिश पर्सन जैसे होते हैं पीपल। तो वो फिर कमज़र्फ़ को इज्जत इसलिए कहा जाता है कि रास नहीं आती है। और पता चल जाता है जिसकी तारीफ की जाए कि ये शख्स लफाजी कर रहा है, ये खुशामद है, या ये सच्चे दिल से तारीफ है, ये इज्जत एहतराम के साथ किसी को याद किया जा रहा है, सबको पता होता है। हमारे अंदर वो जो जिसे कहते हैं ना ज़मीर नाम की चीज़ अल्लाह ताला ने अंदर रख दी, वो सबसे बड़ा जज है। दूसरे लोग तो बाद में जज करेंगे, खैर खुदा की तो क्या ही बात है, वो तो इंसान को बनाने से पहले जानता है रोज़े क़यामत तक कि ये शख्स क्या कहेगा, क्या बोलेगा, क्या अमल करेगा, क्या इसका कॉलो फेल होगा, इसका किरदार कैसा होगा। तो वो तो बात छोड़िए, हम आम इंसानों की आपस में बात कर रहे हैं कि वो हम नहीं जानते किसी की क्या नीयत होती है, हम नहीं जानते किसी का क्या उसमें गरज या मकसद छुपा होता है, लेकिन जो आपका किरदार होता है ना, आपके अल्फाज जो होते हैं, वो अक्कासी करते हैं आपके किरदार की। पता चल जाता है बहुत हद तक कि आप क्या किस हवाले से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं, इसका आया मतलब भी आपको, आपके अंदर इसका मतलब भी है, आप जानते हैं कि किस लिए आप कह रहे हैं, सब पता होता है। तो ये जो ज़मीर है हमारा, ये इसको जागते रहना चाहिए, इसको ज़िंदा रहना चाहिए।
وہ اقبال نے کہا تھا نا, دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ, دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ, کہ تھا شاید دوسرا مصرع تھا کہ یہی ہے قوموں کے مرضے کوہن کا چارہ. تھوڑے سا الفاظ آگے پیچھے ہو گئے, معذرت چاہیں گے, لیکن اس شعر کا مطلب یہی تھا. تو اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا چاہیے انسان کے اندر, سب سے بڑا وہ جو ہوتا ہے نا بتانے والا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کو کہاں پہ درست اپنے آپ کو کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے, تو وہ اندر سے ہی آپ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. اس آواز کو زندہ رکھیے, اس کو مرنے مت دیجیے. تو طارق بٹ صاحب, بہت سی باتیں ہو گئیں, آپ ہی کی بات سے بات شروع ہوئی اور دیکھیے کتنی لمبی بات ہو گئی. ہم تہے دل سے آپ کے مشکور و ممنون ہیں, جس طرح سے آپ دعاؤں سے نوازتے ہیں, یقین کیجئے ہمارے دل سے بھی اسی طرح سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے, مخلصی کے ساتھ اور عزت اور احترام کے ساتھ. خوش رہیے, شاد و آباد رہیے, اپنا خیال رکھیے گا. یہ آنے والا خوبصورت سا گیت جو ہے یہ ہم آپ کے نام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے پسند کریں گے. اور کیا کیا جائے, جی ہاں, فی الحال آپ اس گیت کو سنیے گا, باقی باتیں ہوتی ہیں اس گیت کے بعد.

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio.
12: سامعین کرام، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، آن لائن بھی یہ نشریات سنائی دے رہی ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk کے ذریعے، ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے بھی جو فون ایپ ہے اس پہ آپ سن رہے ہیں ہمیں جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ چند علاقوں میں پلس ڈیپ کے ذریعے بھی یہ نشریات سنائی دیتی ہیں. لیجئے اب ایک خوبصورت سا گیت آپ سامعین کے نام ہم کرنے جا رہے ہیں, اور کس کے نام کر رہے ہیں؟ تو فیل صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے, بہت شکریہ, آپ کا بھی بڑی نوازش کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے, تہ دل سے آپ کے ہم مشکور و ممنون ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ گیت آپ کو پسند آئے گا, اور ساتھ ہی ساتھ جناب طارق بٹ صاحب پروگرام میں آپ دوبارہ شامل ہوئے, بہت شکریہ پروگرام کی تعریف و توصیف کرنے کے لیے, تہ دل سے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں, تہ دل سے آپ کے ہم مشکور و ممنون ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ گیت آپ کو پسند آئے گا, اور ساتھ ہی ساتھ جناب طارق بٹ صاحب پروگرام میں آپ دوبارہ شامل ہوئے, بہت شکریہ پروگرام کی تعریف و توصیف کرنے کے لیے, تہ دل سے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں.

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: जी मौजी समीन कराम, खूबसूरत सा आपने गीत सुना, उम्मीद करते हैं कि पसंद किया होगा। और हमें फ़ोन किया था किसने, जी हाँ, तो फैल साहब आपके लिए हमने गीत पेश किया, यकीनन आपने पसंद किया होगा। जुनेद साहब आपने फ़ोन किया, आपने कहा कि काम में भी मसरूफ़ हैं आप ही, और साथ ही साथ आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात को भी सुन रहे हैं। तो आने वाला गीत जो है जुनेद साहब आपके नाम हम करते हैं, उम्मीद करते हैं इस गीत को आप पसंद करेंगे। लीजिए इस गीत को सुनिएगा।

समीर ने कहा, हम अचानक से गीत खत्म भी हो जाते हैं, शुरू भी हो जाते हैं, बास औकात तो ऐसा होता रहता है। कोई बात नहीं, चलता रहता है ऐसा। बस थोड़ा सा अगर अलर्ट इंसान बैठा हो तो फिर तो ठीक रहता है, लेकिन अगर ध्यान इधर उधर जाए तो बस फिर तो गड़बड़ होने का पक्का इम्कान जो है ना वो मौजूद होता है। बहरहाल एक खूबसूरत सी, आपको थोड़ा सा उदास कर देने वाली बात है। डॉक्टर फ़खर अब्बास एक शायर थे, डॉक्टर भी थे, MBBS डॉक्टर, लाहौर से ताल्लुक था उनका। और उनकी एक नज़्म कह लीजिए, गज़ल कह लीजिए, गज़ल तो नहीं होती है वो, बस कलाम था उनका, बड़ा मशहूर हुआ, बड़ा फेमस हुआ, बड़ी जल्दी रुख्सत हो गई, यंग ही थे वो, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो उनकी वो जो उनका कलाम था वो आपके गोश गुजार करते हैं। वो लिखते, उन्होंने लिखा था कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। ये हूं मैं और ये मेरी तस्वीर, ये हूं मैं और ये मेरी तस्वीर, देख ले गौर से मोहब्बत है। बचपना कम सिनी जवानी आज, बचपना कम सिनी जवानी आज, तेरे हर दौर से मोहब्बत है। एक तहजीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है। ये हमारा इसमें से सबसे पसंदीदा शेर कह लीजिए कि एक तहजीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है। उसकी हर तर्ज मुझको भाती है, उसके हर तौर से मोहब्बत है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। एक तहजीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है। आप देख लीजिए ज़मीने कराम, हम जितने लोग यहाँ पर हैं दयारे गैर में, खा आप यहाँ पे हैं, खा यूरोप में कोई हमें सुन रहे हैं, या कोई और किसी मुल्क में सुन रहे हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात जहाँ पहुँचती हैं नेट के ज़रिए, ऑनलाइन आप सुनते हैं, तो उन सबको अपना मुल्क बहुत याद आता है। उन सबको अपने वतन की मट्टी, अपनी जगह जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ पे पले बड़े, जहाँ बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, उनका अच्छा बुरा जैसा भी वक्त था गुजरा, वो लोग भूलते नहीं हैं। और ये जो हमने आपको बताया कि जो शेर हमें इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है वो यही है कि एक तहजीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है। आप यहाँ आ जाते हैं रोज़ी रोटी के चक्कर में, या जिनकी शादियाँ होती हैं वो आ जाते हैं, मजबूरी होती है, किस्मत ले आती है, नाम हम किस्मत को दे देते हैं वैसे तो। बहरहाल होता क्या है, वो उस तहजीब को, उस दौर को मिस करते हैं, वहाँ की जो आबो हवा होती है, वहाँ के जो लोगों का रहन सहन होता है, वहाँ के लोगों का जो तौर तरीका होता है, हद तक इस ज़बान, ये बहुत बहुत अहम किरदार अदा करती है हर इंसान की ज़िंदगी में। इसलिए इंसान अपनी वो जो उसको कहा जाता है ना, कौन सी ज़बान है हिंदी में, जन्मभूमि, उसको नहीं भूलता। अपनी पैदाइश की जगह जाए पैदाइश उर्दू में कहा जाता है, तो वो उसको नहीं भूल पाता, उसको वहां की आबो हवा चाहिए होती है, वरना शायद रोजी रोटी तो यहां ज्यादा अच्छी मिल रही है, यहां ज्यादा आसाइशात के आप आदि हो जाते हैं, यहां आपके लिए बहुत से और बेनिफिट्स मौजूद हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या जो भी कह लीजिए, यहां मौके बहुत ज्यादा हैं। कहते हैं ना, दिस इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये जो यूरोप कह लीजिए या इंग्लैंड कह लीजिए, यूके कह लीजिए, तो ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है अभी भी, पहले तो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से कहा जाता था। तो उस सब के बावजूद सामीने कराम, सोचने की बात यही है ना कि क्यों इंसान फिर अपने पीछे जगह को भूल नहीं पाता, वहाँ के लोगों को भूल नहीं पाता। तो हम ये समझते हैं कि उसकी अगर आप दरिया को कूजे में बंद करना हो, बताना हो आपको, तो ये शेर उसकी मुकम्मल अक्कासी करता है कि वो आपको तहजीब चाहिए होती है, आपको वो दौर वो वक्त चाहिए होता है कि दोबारा वापस लौट के आ जाए। आप उसी कमसिनी में, उसी जो जिसे नाइव होना कहते हैं, मासूमियत भोलापन, और जो लोग होते हैं, जिस तरह की आबो हवा होती है, जो आपकी वहाँ पे रूटीन होती है ज़िंदगी की एक, आप उसमें वापस जाना चाहते हैं, आपको उस दौर से मोहब्बत होती है, उस जगह से मोहब्बत होती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तभी इंसान भूल नहीं पाता।
जिस जो अब देखिए ना कि जो यहाँ हमारे बच्चे या बच्चों के आपके बच्चों के बच्चे या जो भी यहाँ की अगर पैदाइश है तो उनके लिए यही होमलैंड है, वो इसको नहीं भूलेंगे। कहीं भी दुनिया में चले जाएं, आप कहीं भी उनको ले जाइए, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना वतन, अपना मुल्क, अपनी मट्टी, अपनी जगह, वो जन्नत होती है। इंसान की उसके साथ बस क्या कहिए, यादें तो जुड़ी ही होती हैं, लेकिन उसके साथ इंसान का दिल वहां पर मौजूद होता है। और वही कहते हैं कि जहां पे आपका दिल है वहीं पे आपकी जिंदगी होती है। तो बस ये ऐसी ही कोई बात है। बहरहाल जरका साहिबा, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ सुनी। आप जब भी उठती हैं, उठ के जनाब ज़रूरियात ज़िंदगी से फ़ारिग होके फिर आप माशाल्लाह हमेशा कॉल करती हैं, और आपने फरमाइश की जिस गीत की, देख लीजिए इत्तफाक़ की बात है, वो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक है, थोड़ा सा अफसुरदा गीत है। तो लीजिए, आपकी फरमाइश पर यह खूबसूरत सा गीत जरका साहिबा आपके लिए और आपके साथ साथ जितने भी ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के हमारे सुनने वाले हैं, जो 1413 AM पे सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं हमें, या फिर हमारे मोबाइल ऐप के जरिए सुन रहे हैं, उन सब के नाम आपकी जानिब से।

0: जी सामिन कराम, थोड़ा सा उदास सा गीत था। आप देखिए हमें खामखा में हंसी आ रही है, माजर चाहेंगे इसके लिए। जरका साहिबा, आपकी फरमाइश का गीत था, आपके लिए पेश किया, और बाकी लोगों में नहीं, यकीनन लोगों ने पसंद किया होगा इसको। प्रोग्राम में शिरकत की नाहिद साहिबा, आपने बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपकी भी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये जान के खुशी हुई कि आपकी सेहत माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला अता फरमाए, आमीन सुमामीन। और आपने क्या कहा, आपने फरमाइश की है खूबसूरत से गीत की, यानी हम अपनी पसंद से गीत लगा दें, किसके लिए? आपकी जो माशाल्लाह से क्या कहिए नाहिद साहिबा, आपकी जो राज दुलारियां हैं, जो प्यारी सी बेटियां हैं, आपने कहा कि उनके लिए गीत लगाएं, उनमें शामिल कौन है हम बताएंगे ब्रेक के बाद।
1: Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

जी जमीन कराम, ये खूबसूरत सी डेडिकेशन थी नाहिद साहिबा की तरफ से, उनकी जो प्यारी प्यारी सी बेटियां हैं, बाबुल की क्या कहते हैं, वो चिड़ियां थी, चिड़ियां हैं भी, रहती हैं हमेशा, एक दफ़ा चली जाती हैं लेकिन बार बार आती हैं। मैके जाना सबको पसंद होता है, कोई भी बेटी हो, कोई भी माँ हो, जब ये गीत वो सुनती हैं तो हमें तो लगता है कि उनकी आंखें ज़रूर बिल ज़रूर भर आती हैं। बचपन से ये जो फोक गीत हैं, ये शादी ब्याह के गीत, आजकल नए बहुत से आ गए, लेकिन इन गीतों की क्या ही बात है, जब भी इनको सुनते हैं तो इंसान के अंदर बड़ी खूबसूरत सी जो है ना कैफियत जन्म लेती हैं। इंसान को अपने माँ बाप भूलता तो नहीं है, इंसान कभी भी नहीं भूलता, लेकिन बहरहाल वो एक वो याद ताज़ा सी हो जाती है कि जब इंसान, यानी बच्चियां जो होती हैं, बहनें जो होती हैं, बेटियां, उनकी शादियां जब होती हैं, और जिस तरह से वालिदैन की, खसूसन माओं की जो कैफियत होती है, बाप की भी कुछ कम नहीं होती है, कुछ बाप तो माओं से ज़्यादा जज्बाती होते हैं और वो नरम दिल होते हैं, ये तो डिपेंड करता है, हर शख्स की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन ये जो गीत था खूबसूरत सा, हमें बहुत पसंद आया और हमने सोचा कि नाहिद साहिबा आपके लिए लगा दिया जाए, आपकी बेटियों के लिए लगा दिया जाए, आपने खसूसी फरमाइश की थी, उम्मीद करते हैं कि वो भी इसे पसंद करेंगी। और रुखसाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत आपकी नवाजिश कि आप प्रोग्राम में शामिल हुई, तहे दिल से आपके मशकूर ममनून हैं। बहुत सी नेक तमन्नाएं, बहुत सी दुआएं आपके लिए भी। समीने कराम, हम लोग भी जब दिल से दुआ देते हैं ना, आप लोग जिस तरह से हमें दुआओं में याद रखते हैं, हम भी बहुत दिल से आपको दुआओं में याद रखते हैं। और दुआ वही होती है जो दिल से निकलती है और असर भी जाहिर है वो करती है, और इंशाल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह कबूल फरमाते हैं। तो रुखसाना साहिबा, आपके लिए, आपकी वालदा साहिबा के लिए बहुत सी ढेरों ढेर दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं हमारी। अल्लाह ताला उन्हें और आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए, आपकी जोड़ी सलामत रखे अपने हस्बैंड के साथ। आपने कहा कोई सा भी अच्छा सा गीत लगा दीजिए, तो रुखसाना साहिबा एक ये भी बड़ा पुराना सा गीत है, बहुत बचपन में सुना करते थे, उसके बाद तो शायद कभी नहीं सुना, तो क्या ख्याल है कि इस गीत को लगाया जाए? वैसे तो उदास गीत नहीं है, उसकी वर्डिंग उदास लगती है, लेकिन गीत थोड़ा सा रोमांटिक सा ही है। तो लीजिए, इस खूबसूरत से आप गीत को सुनिएगा, यकीनन पसंद आएगा।

0: जी मोदी साहब, इन्हें कलाम समाप्त फरमा रहे हैं इस वक्त आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 104.13 AM पे आपसे मुखातिब है आपकी मेजबान उस्मा अशफाक। बात हो रही थी आपसे, हम क्या कह रहे थे कि जी कुछ अशार, कुछ नज़में, कुछ उनका कलाम हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। आपको ये बूझना है, कह लीजिए छोटा सा इम्तिहान है एक, कि ये किस हम शायर की जो है ना ये कलाम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर हैं, और सबसे बड़ी बात आपको एक बहुत बड़ा हिंट दें कि वो ज़्यादातर उन्होंने फिल्मी गीत लिखे हैं, बहुत ज़्यादा फिल्मी गीत लिखे हैं उन्होंने। जो सबसे पहला आपको हमने उनका गीत सुनाया, यकीनन आपको उसी से अंदाज़ा हो गया होगा। उसके बाद एक और उनकी आपको एक दो और सुनाते हैं नज़में, उसका उनवान है दिल ढूंढता है। ये भी गीत है, आप इसको भी सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत खूबसूरत सा गीत है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, जाड़ों की नर्म धूप और आंगन में लेट कर, आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए को, औंधे पड़े रहें कभी करवट लिए हुए, या गर्मियों की रात को पुरवाई जब चले ठंडी सफेद चादरों पे, जागे देर तक तारों को देखते रहें छत पर पड़े हुए, बर्फीले मौसमों की किसी सर्द रात में जाकर इसी पहाड़ के पहलू में बैठकर, वादी में गूंजती हुई खामोशियां सुने, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। एक और उनकी नज्म है, ये राह बहुत आसान नहीं जिस रात पे हाथ छुड़ा कर तुम यूं तन तन्हा चल निकली हो, इस खौफ से शायद राह भटक जाओ ना कहीं, हो मोड़ पे मैंने हर मोड़ पर मैंने नज्म खड़ी कर रखी है, थक जाओ अगर और तुमको ज़रूरत पड़ जाए, एक नज्म की उंगली थाम के वापस आ जाना। एक और स्केच के उनवान से छोटी सी उनकी नज्म है, याद है एक दिन मेरे मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था, आकर देखो इस पौधे पर फूल आया है। क्या खूबसूरत सी छोटी सी नज्म है, मजीद भी उनका कुछ कलाम हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल लीजिए ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम पेश करते हैं आपके लिए। नाहिद साहिबा, दोबारा आप प्रोग्राम में शामिल हुई थी, तहे दिल से आपके मशकूर व ममनून। आपने अपनी बेटियों के लिए, और आपने कहा कि जी जितने भी सबकी जिनकी बेटियां हैं उन सबके लिए खूबसूरत सा गीत लगाइए, तो हम उनके लिए सबके लिए आपकी जानिब से ये गीत पेश करते हैं। और रुखसाना साहिबा, आपके लिए भी यही खूबसूरत सा गीत, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि अभी भी आप साथ निभा रही होंगी। लीजिए सुनिएगा।
1: निम्मो,
2: मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती।
1: मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
2: मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती।
1: मगर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ।
2: मैं कहती हूँ चले जाओ, मत आओ मेरे पीछे, रुके तो मैं दूर कहीं चले जाऊंगी।
1: इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है, छोटी सी ये दुनिया है निम्मो, इसके रास्ते घूम फिर कर एक दूसरे से मिल ही जाते हैं।

जी हाँ, जमीने का नाम वाकई दुनिया बहुत ही छोटी है। हम और आजकल के हिसाब से देखा जाए, वो ग्लोबल विलेज का जब नाम दे दिया गया इसे, तो फिर तो ये बस छोटा सा एक गांव बन के रह गई है। आप कहीं पे भी किसी को भी किसी भी वक्त ढूंढ सकते हैं, कहीं पे भी हो दुनिया के किसी भी हिस्से में। तो बहुत खूबसूरत सा गीत, बहुत ही खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, उन्हीं पे फिल्माया गया, उन्हीं ने गाया। क्या किशोर कुमार की आवाज़ है सामीने कराम, क्या कहिए। हमें तो बहुत पसंद है उनके गीत, लेकिन वो क्या है ना कि आपकी जो फरमाइशें होती हैं, आपकी जो पसंद होती है, उसके हिसाब से हम प्रोग्राम में गीत जो है वो अपने तरतीब देते हैं। इसलिए आप कम कम सुन पाते हैं किशोर कुमार को, बजाते खुद हमारी वो बहुत ज्यादा पसंद है। हम बात कर रहे थे, आपको कलाम सुना रहे थे किसी शायर का। फिक्र ना कीजिए, अभी आज मौका है तो एक और किशोर का गीत हमने क्यों कर रखा है, इस नज़्म एक दो नज्मों के बाद जरूर आपको सुनाएंगे। वो लिखते हैं ख्वाब की दस्तक। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तनूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा गुड़ में घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तनूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ था। और एक अगली उनकी नज्म है। बस हर नज्म जो है सामीने कराम, वो एक नया ख्याल है, एक नई तस्वीर है, एक नई कहानी है, नए किरदार हैं। क्या खूबसूरती है इनकी पूरी शायरी की। रेशम का ये शायर लिखते हैं, तूत की शाख पे बैठा कोई बुनता है रेशम के धागे, लम्हा लम्हा खोल रहा है, पत्ता पत्ता बेन रहा है, एक एक सांस को खोल के अपने तन पर लिपटाता जाता है अपनी ही सांसों का कैदी। रेशम का ये शायर एक दिन अपने ही तांगों में, अपनी ही तागों में घुट कर मर जाएगा। और अगली उनकी नज्म है एहतियात। देखो आहिस्ता चलो और भी आहिस्ता चलो, देखना सोच समझ कर जरा पांव रखना, जोर से बचना उठे पैरों की आवाज कहीं, कांच के ख्वाब हैं बिखरे हुए तन्हाई में, ख्वाब टूटा तो कोई जाग ना जाए, देखना कोई जागा तो वहीं ख्वाब भी मर जाएगा। एक और खूबसूरत सी उनकी नज्म हमने आपके गोश गुजार की। मजीद उनकी और भी हमारे पास बहुत सी नज्में हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत खूबसूरत। लीजिए किशोर कुमार का एक और खूबसूरत सा गीत सुनिए, और इसकी शायरी भी बहुत जबरदस्त है। होपफुली यू विल एंजॉय द गीत।

जी सामिने कराम, एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने सुना। क्या मौसीकी थी, क्या उसकी शायरी थी, और जाहिर है किशोर कुमार की क्या खूबसूरत सी आवाज़। हमें तो बहुत पसंद आया, आप सबके लिए पेश किया। नहीं साहिबा, आप कह रही हैं कि जी आपकी भी दोस्तों का जो गुलदस्ता है खूबसूरत सा, उन सब के लिए एक बहुत अच्छा सा गीत लगाया जाए, तो नहीं साहिबा ज़रूर, क्यों नहीं, हम यहाँ इसीलिए तो बैठे हैं आपकी फरमाइशें पूरी करें, आपकी जो डेडिकेशंस हैं वो हम आप तक पहुँचाएँ। तो आने वाला जो गीत होगा नहीं साहिबा, आपकी जानिब से आपकी जितनी भी खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सहेलियाँ हैं, दोस्ते हैं, उन सब के नाम हम करेंगे। उससे पहले बात हो सामिन ख्वाबों की। ख्वाब जो है हर शख्स देखता है, और ये भी एक ऐसी कुदरत की चीज़ है, नेमत है, कि जो अब तक फ्री है और ये इंशाल्लाह हमेशा फ्री ही रहेगी। इसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी और ना ही इस पे कोई पाबंदी है। ख्वाब देखने पे पाबंदी भी नहीं, कोई टैक्स भी नहीं लगता, इसलिए परेशानी भी कोई नहीं होती। तो अच्छे अच्छे ख्वाब देखने चाहिए, सब लोग देखते हैं ख्वाब, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखते, बल्कि बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए। बड़े बड़े ख्वाब से मुराद है कि कोई आपकी ज़िंदगी का जब कोई मकसद होता है ना, जब आपने एक गोल, एक एम अपना बना रखा है कि यू हैव टू अचीव दैट वन, चाहे वो गोल हो चाहे वो एम हो, तो फिर आपको वैसे ही ख्वाब भी, हम ये समझते हैं क्योंकि आपका जो कॉन्शियस है, जो आपका सब कॉन्शियस है, उसमें वो चीज़ें मौजूद रहती हैं, वो यादें, उसमें वो बातें, वो जो कुछ आप बोलते हैं, कहते हैं या सोचते रहते हैं, ख़ास तौर पर जो आपकी थिंकिंग होती है, आपकी थॉट्स, वो उसी के मुताबिक हम ये समझते हैं कि ख्वाब आपके तश्कील पाते हैं। तो अच्छा सोचना चाहिए ताकि आपके ख्वाब अच्छे आए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं, चलिए ज़िंदगी में तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, तकालीफ हैं, वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन रात के वक्त जब आप सुकून से सोएंगे तो ख्वाब आएंगे ना, और जब सुकून से सोएंगे आपके इरादे बड़े बुलंद होंगे तो ख्वाब भी उसके हिसाब से आएंगे। अच्छे ख्वाब देखा कीजिए, उसमें प्यार मोहब्बत देखा कीजिए, उसमें आप सुकून देखा कीजिए, उसमें ज़िंदगी खूबसूरत है उसको देखा कीजिए। तो लीजिए एक और खूबसूरत सा हम गीत, ये उस गुलदस्ते के नाम करने जा रहे हैं नाही साहिबा, आपके गुलदस्ते के, और ये भी शायद बहुत पुराना गीत है, कभी सुना था, याद आता है, इसलिए जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा, महसूस होंगे आप। तो लीजिए सुनिएगा इस खूबसूरत से गीत को, उसके बाद क्या होगा, जी हाँ, उसके बाद हम चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद दोबारा सामीन कराम यहाँ पर हम मौजूद होंगे आपसे बातचीत के लिए। प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो 01274306677, यह हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है, इसके ज़रिए आप शामिल हो सकते हैं। याद दिलाते चलें कि आज हमने जाविये को प्रोग्राम में शामिल नहीं किया, तारीख के औराक से कोई तारीखी वाक़ आपके गोश गुजार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नगमात हैं और छोटी बहुत जो है ना शायरी, वो हमने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल कर रखी है। और जिनकी नज़में सुना रहे हैं, अगर आपके इल्म में आ चुका हो कि ये हम किन की शायरी पेश कर रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं 01274306677 के ज़रिए।

0: जी स्वामी ने कहा राम बहुत ही पुराना सा गीत था, बहुत अरसे के बाद सुना, बहुत अच्छा लगा। मीठे मीठे ये गीत होते हैं पुराने, इनकी शायरी बहुत खूबसूरत होती है, उनके पीछे कहानी होती है। आजकल के तो गीत माजरत के साथ बस 2 4 दिन के बाद वो ऐसे गायब होते हैं प्लेटफॉर्म से कि जैसे कभी आए ही नहीं थे, इसलिए कि उनमें वो फीलिंग्स नहीं होती, वो कैफियत हम ये समझते हैं कि नहीं होती जो इन पुराने गीतों में होती थी। इनको दिल से बनाया जाता था, कई हफ्ते लगते थे एक गीत को बना के फिर आगे उसको पेश करने में, लेकिन आज क्या है कि एक एक दिन में 10 10 गीत जो है वो बन जाते हैं, तो कहाँ से वो रूह आएगी उनमें और कहाँ से वो खूबसूरती आएगी। बहरहाल हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब और उसके बाद करते हैं बकिया बात आपसे।
1: Number 1 Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

जी स्वामिनी कराम, बहुत ही खूबसूरत सा कवाली सी थी आपने गीत सुना। गीत के लिए कवाली कही है, और क्या गजब की कवाली थी या गीत था, किशोर कुमार ही की आवाज़ में था। आज हमने सोचा चलिए ये जो भूले बिसरे कुछ पुराने गीत हैं इन्हीं को लगा दिया जाए, और यकीनन आपने मौसम के साथ साथ ऐसे गीत एंजॉय किए होंगे। शायरी हम आपको सुना रहे हैं, किनकी सुना रहे हैं ये तो फिर आपको हमें बताना है 01274306677 के जरिए कि किसकी शायरी है ये। अब अगली ये जो नज्म है सामीने कराम, इसमें पूरी ज़िंदगी की फिलॉसफी जो है ना वो छुपी हुई है। फिलॉसफी तो खैर क्या कहिए, हकीकत छुपी हुई है। अगर आप गौर से इसको सुनेंगे तो आपके इल्म में आएगा कि किस तरह से, किस खूबसूरती से उन्होंने ज़िंदगी की जो हकीकत है, जो हर शख्स को उसका सामना करना पड़ता है, उसको किस तरह से बयान किया, कितनी आसानी के साथ, कितनी सादगी से। आप ये कहिए, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं, बस सादा सादा बात की। उनवान है बुढ़िया रे, बुढ़िया जो बड़ी बूढ़ी औरत होती है। तो लिखते हैं, बुढ़िया रे तेरे साथ तो मैंने जीने की हर शय बांटी है, दाना पानी, कपड़ा लत्ता, नींदें और जगराते सारे, औलादों के जन्ने से बसने तक और बिछड़ने तक। क्या कहने हैं, बुढ़िया रे तेरे साथ तो मैंने जीने की हर शय बांटी है, दाना पानी, कपड़ा लत्ता, नींदें और जगराते सारे, औलादों के जन्ने से बसने तक और बिछड़ने तक उम्र का हर हिस्सा बांटा है। तेरे साथ जुदाई बांटी, रूठ, सलाह, तन्हाई भी, सारी कारिस्तानियां बांटी, झूठ भी, सच भी। मेरे दर्द सहे हैं तूने, तेरी सारी पीड़ें मेरे पैरों से होकर गुजरी हैं, साथ जिए हैं, साथ मरे, साथ जिए हैं, साथ मरे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दोनों में से एक को एक दिन दूजे को शमशान पे छोड़कर तन्हा वापस लौटना होगा बुढ़िया रे। तो समीन आपने अगर सुना तो यकीनन आपको भी समझ में आ गया होगा कि जिंदगी की यही हकीकत है। बहुत रेयर होता है, इट्स वेरी वेरी रेयर, बहुत ज़्यादा कम कि जी मियाँ बीवी को इकट्ठे मौत आ गई, वो इकट्ठे इस दुनिया से चले गए। वरना इंसान जिनके साथ इतनी सारी ज़िंदगी 50-50, 70-70 बरस भी साथ गुजार देता है ना, मियाँ बीवी की बात हो रही है, तो वो आखिर एक ना एक दिन छोड़ के किसी एक को पहले जाना है, किसी को बाद में जाना है। वो जो कहा ना कि मौत से किसको रस्तगारी है, आज हमारी तो कल, आज किसी की तो कल हमारी बारी है। तो इससे आप नज़रें नहीं चुरा सकते, बल्कि मौत जो है ना ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। क्यों? मौत को याद रखेंगे आप तो ज़िंदगी को आप मज़ीद अच्छे से गुजारेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इल्म होगा कि हमारे पास बहुत महदूद वक्त है, इसी वक्त में हमने सब कुछ करना है। जो फ़ानी हमारी ज़िंदगी है ना, जिससे एक दिन ख़त्म हो जाना है, ना मालूम कितने बरस हैं। कोई अपनी उम्र लिखवा के खुद से नहीं आया कि उसने 40, 50, 60, 70, 80 जितने बरस भी रहना है, वो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। तो जब आपको ये भी पता है कि आपका वक्त बहुत महदूद है, तो फिर आप उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। मौत को याद रखते हैं तो फिर आपको ये भी पता चलता है कि आपने जब जाना है ना इस दुनिया से, तो खाली हाथ लौटना है, कुछ साथ नहीं जाना माँ सिवा आपके आमाल के, और वो भी अच्छे आमाल जो किए होंगे, तो उनकी बदौलत ही अगर आप उस अबदी जिंदगी में जाना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी वो गुजारना चाहते हैं, तो उसका मुकम्मल इन्हिसार जो है वो यहाँ इस जो वक्ती जिंदगी है ना हमारी, उसके ऊपर है। तो आज जो तकालीफ आप बर्दाश्त कर रहे हैं, परेशानियां बर्दाश्त कर रहे हैं, आप बर्दाश्त अगर हंस करनी तो पड़ेंगी, चाहे रोके कीजिए, चाहे धोखे कीजिए, चाहे शिकवे कीजिए, शिकायत कीजिए, परेशानियां तो वहीं पे रहेंगी, आप ही ने उनको कोशिश करके ख़त्म करना है। क्योंकि ज़िंदगी इम्तिहान है, ये ज़िंदगी इम्तिहान का है, सबको मुश्किलात का सामना करना है। हाँ ये बात और है कि हर किसी की मुश्किल मुख्तलिफ है, आपकी कोई और मुश्किल होगी, हमारी कोई और परेशानी होगी, किसी और की और परेशानी है, किसी को कोई और दुख और तकलीफ है। तो अल्लाह ताला दरअसल आजमाना चाहता है ना कि फिर भी कौन उसका शुक्रगुजार बंदा बन के रहता है। तो फायदा हमारा ही है, ना शुक्रे बंदे बनेंगे तब नुकसान हमारा है, शुक्रगुजार बंदे बनेंगे फायदा हमारा है। ऊपर वाले को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
کہ آپ کتنا شکر ادا کرتے ہیں یا کہ آپ کتنا ناشکرے ہیں. آپ انکار کر رہے ہیں اس کی نعمتوں کا یا ان کا بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. تو سامعین کرام, یہ موت کو یاد اسی لیے رکھنے کو کہا گیا, یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اور وہ موت جو ہے, موت کے بعد کی زندگی بھی اصل حقیقت ہے, بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ زندگی اتنی اہم کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس زندگی میں جو کام ہم کریں گے وہی ہمارے آگے آنے ہیں. اچھے کام ہوں گے تو اچھا انجام, برے کام ہوں گے تو برا انجام. سیدھا سا اصول ہے, سمپل سا. تو اس زندگی کو ایسے ضائع جو کرتے ہیں نا, وہ دراصل زندگی کی ناشکری کرتے ہیں. یہ سوچنا چاہیے, موت کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ, وہ آپ کو سیدھے رستے پر رکھتی ہے. چلیے ایک اور چھوٹی سی نظم سناتے ہیں. نٹ کھٹ. گیلی گیلی سی دھوپ کے گچھے, ٹھنڈی ٹھنڈی سی آگ کی لپٹیں, سرخ چمکیلا گل مہر کا پیڑ, نیم تاریک بند کمرے سے جب بھی دروازہ کھول کر نکلوں, سرخ چمکیلی دھوپ کا چھینٹا ایسے لگتا ہے آنکھ پر آ کر جیسے چنچل شریر ایک بچہ چوری چوری کواڑ سے کودے, ہا کہہ کر ڈرائے اور ہنس دے. اس کے بعد پتجھڑ, کہ جب جب پتجھڑ میں پیڑوں سے پیلے پیلے پتے میرے لان میں آ کر گرتے ہیں, رات کو چھت پر جا کر میں آکاش کو تکتا رہتا ہوں, لگتا ہے کمزور سا پیلا چاند بھی پیپل کٹے سوکھے پتے سا لہراتا لہراتا میرے آنگن میں آ کر اترے گا. اور ایک اور نظم سنیے. عادتیں. سانس لینا بھی کیسی عادت ہے, جیے جانا بھی کیا روایت ہے, کوئی آہٹ نہیں بدن میں کہیں, کوئی سایہ نہیں ہے آنکھوں میں, پاؤں بے حس ہیں چلتے جاتے ہیں. ایک سفر ہے جو بہتا رہتا ہے, کتنی برسوں سے کتنی صدیوں سے جیے جاتے ہیں جیے جاتے ہیں. عادتیں بھی عجیب ہوتی ہیں. جی ہاں, عادتیں بھی عجیب ہوتی ہیں. سوچیے گا اپنی عادتوں کے بارے میں, اور فی الحال یہ رومانٹک سا گیت بھی ساتھ سنیے.

0: मौजी सामी ने कहा बहुत रोमांटिक पुराना सा आपने गीत सुना, बहुत खूबसूरत सा मीठा सुरीला सा गीत था, अच्छा लगा। और जरका साहिबा, नाहिद साहिबा, आपने बताया कि आपको भी बहुत पसंद आया, तहे दिल से आपके मैं मशकूर व ममनून है कि अभी तक आप हमारे साथ साथ हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और जनाब तारिक भट्ट साहब, आप भी तीसरी मरतबा प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत आपका शुक्रिया, आपके मशकूर हैं तहे दिल से। हम भी यकीन मानिए बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप जैसे लिसनर्स हमें मिले हुए हैं, जिनकी वजह से यकीन कीजिए कि बड़ी हौसला अफजाई जब होती है तो मजीद दिल बढ़ जाता है, मजीद तकवीत महसूस होती है, मजीद अच्छा प्रोग्राम करने को दिल चाहता है कि चलिए हमें लोग जब सुन रहे हैं, आप जैसे अच्छे खूबसूरत जो सामे हैं वो सुन रहे हैं, तो फिर कोई अच्छी बात की जाए। वो फिर खुद ब खुद अल्लाह ताला दिमाग में कोई ना कोई ऐसी बात डाल देते हैं, ऐसा नुक्ता डाल देते हैं कि जो आप लोगों के दिल को छू जाता है या आपको अच्छा लगता है, आप उसको याद रखते हैं। तो यकीन कीजिए तारिक भट्ट साहब, हमारी भी बहुत सी नेक तमन्नाएं, हमारी भी बहुत सी दुआएं आपके लिए। इसी तरह से समीरा साहिबा को आज हम मिस कर रहे हैं, हमारी जो रेगुलर कॉलर हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि वो बहुत मसरूफ है, इसलिए वो जो है वो कॉल नहीं कर सकेंगी। कोई बात नहीं, खुश रहिए, शादो आबाद रहिए। नाहिर साहिबा, जरका साहिबा, रुखसाना साहिबा, आप प्रोग्राम में शामिल हुई और अभी तक साथ साथ ही भी हैं। और तुफैल साहब, आपने दोबारा शिरकत की प्रोग्राम में, आपके इसलिए मशहूर हैं बहुत ज़्यादा कि ये जो इतनी शायरी हम सुना रहे थे, इतनी खूबसूरत सी, तो हम तलाश में थे कि कोई आए वो बताएं, बूझ जाएं कि जी किसकी शायरी है जो पेश की जा रही है। तो आपने बताया कि ये गुलजार साहब हैं। जी हाँ, गुलजार के बहुत से बेशुमार लिखे हुए गीत आप सुनते हैं। कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा सीन नहीं शायद कि जिसके मुताबिक गुलजार ने कोई खूबसूरत सा गीत ना लिखा हो, और बहुत थॉटफुल गीत, इतनी सोच वाले गीत कि यकीन कीजिए कि वो जब आप सुनते हैं ना, तो आपने अभी ये शायरी जो उनकी हम पेश कर रहे हैं, इसी से अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि वो आम गीत नहीं होते, बड़े खासुल खास गीत होते हैं कि जिनमें कोई मकसद होता है, जिनमें कोई पैगाम छुपा होता है। वो शायरी ऐसे ही बिला मकसद, जो भी सामीने कराम बेमकसद चीज़ कोई भी हो, ऐसे अटकल पच्चू बना दें, अगर कोई गीत बना दें, कोई शायरी लिख दें, कोई बात करें, तो जिसका सर पैर ना हो, तो वो सब फजूलियात में आती हैं हमेशा बात। और शऊर इसी को कहते हैं, आगही इदराक इसी का नाम है। इल्म क्या है? इल्म यही है कि आपको पता हो कि आपने कब कौन सी क्या बात कहनी है, किस तरह से कहनी है, कौन आपको सुन रहे हैं, उनके हिसाब से आप बात कीजिए। और जब आप एक मौजू मुंतखब करते हैं अगर, तो फिर आप उस पर स्टिक रहिए, यानी ये नहीं होता कि फिर उसके साथ आप मजीद यहां की बात वहां की बात कीजिए। फोकस्ड रहना चाहिए, बी फोकस्ड, बी प्रिसाइज्ड, कि आप जो बात करें उसका कोई माने हो और वो उससे रिलेटेड हो, जो आपने टॉपिक चुना, आपने चूज किया। तो कोशिश हमारी यही होती है कि बात जो उससे मुतालिक होती है वहीं तक रहे, वरना बातें करने का क्या है, बातें तो इंसान ढेरों ढेर कर सकता है, 3 घंटे हम बातें करके भी यहाँ प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो मुनासिब बात भी नहीं है और वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो वो कहते हैं ना कि बैलेंस करना, यकीन जानिए कि जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन काम बैलेंस करना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, उसमें बैलेंस करना चाहिए। अच्छा, अब गुलजार साहब की नज्म है एतराफ। क्या लिखते हैं कि मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे, जुलाहे की बात कर रहे हैं, मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे, अक्सर तुझको देखता है ये ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुनतर की कोई देख नहीं सकता है। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाहे। सामीने करम, क्या खूबसूरत नज्म है, क्या खूबसूरत नज्म है। एतराफ कर रहे हैं कि मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे, अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। लेकिन इस ताने में
1: तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुनतर की कोई देख नहीं सकता है। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता।
2: On 14:13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
8: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
9: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
8: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
9: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
8: फर्स्ट चॉइस
9: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
8: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
9: 01274317644।
10: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
11: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
11: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
11: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
9: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
9: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
11: बालियां, अंगूठियां और हार,
9: जो दुल्हन करे सिंगार,
11: आज ही मामू काके की दुकान,
9: खालिस सोने की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
11: आपकी शान
9: हमारी आन,
11: क्वालिटी की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
9: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
11: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
9: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
9: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
11: UK।
12: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
12: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274306677. Bradford Asian Radio. The world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 14:13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

जी मोजे समीन कराम समाज फरमा रहे हैं इस वक्त आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे, साथ ही साथ ऑनलाइन भी ये नशियात आप तक पहुंच रही हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो .co.uk के जरिए। इसके अलावा समीन कराम जो हमारा स्मार्ट ऐप है उसके जरिए आप हमारी नशियात से महसूस हो सकते हैं और हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन तमाम कॉलर्स का जिन्होंने आज भी प्रोग्राम में शामिल होकर हमारी हौसला अफजाई फरमाई और प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। तहे दिल से मशकूर ममनून है। और इसके साथ साथ आपको हमने गुलजार साहब की खूबसूरत सी शायरी जो है वो प्रोग्राम में शामिल रखी, आप तक हमने पहुंचाई और सामिन कराम यकीनन आपने उसको पसंद किया। तो फैल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहचान लिया कि ये गुलजार की लिखी हुई शायरी है जो प्रोग्राम में हमने शामिल की। लीजिए अब ये कौन सा गीत आपको सुनवाते हैं हम, लीजिए ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनिएगा और इसके बाद फिर और गीत पेश करेंगे। तारिक भट्ट साहब आप दोबारा प्रोग्राम में शामिल हुए थे, दोबारा बल्कि सहबारा, और हमेशा आप बताते हैं कि जी अब प्रोग्राम के अख्ताम तक आप हमारे साथ साथ हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तहे दिल से तारिक भट्ट साहब हम आपके मशकूर ममनून हैं कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं, हौसला अफजाई फरमाते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं। और हमारी जो बाकी बहनें हैं नाहिर साहिबा, जैसे जरका साहिबा, रुखसाना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप प्रोग्राम में शामिल हुई। तुफैल साहब आपका बहुत शुक्रिया, जुनेद साहब आप तशरीफ लाए थे प्रोग्राम में, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल भी हमारी आपसे मुलाकात रहेगी इसी तरह 10 बजे से लेकर तकरीबन 1 बजे तक प्रोग्राम, लेकिन वो ज़रा डिफरेंट टाइप का होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि आज तो चलिए छुट्टी थी ना, तो हमने कहा कि चलिए आप भी छुट्टी मनाइए, हम भी थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं। तो लीजिए ये एक और खूबसूरत सा गीत ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सबके लिए।

أشهد أن لا

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
13: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
12: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
13: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

ये ब्रॉडफोर्डेशन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर के ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे ऑनलाइन www.bradfordationradio.co.uk पर सुना जा रहा है। इसके अलावा हमारे वह अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हम उन्हें भी दिल की गहराइयों से अपनी आज की इस खूबसूरत महफिल गजल उसने छेड़ी का हिस्सा बनाएंगे। आपके लिए हमारा स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677।

गजल उस शेरी का आगाज हो चुका है। आपको पता है कुछ हमारे मेहमान आने ग्रामीण से खासुल खास हैं, जो हमारी आमद के साथ ही प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही तशरीफ ले आते हैं, और उनमें जो अहबाब मौजूद हैं उनका जिक्र खैर होगा, तारुफ होगा, लेकिन कमर्शल के वक्फे के फौरन बाद। अभी तो वक्त है हमारे, हम अपने उन नादीदा लिसनर्स और सोते मुजाहिदों को भी खुश आमदीद कहते हैं जो हमारे हमराह इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं। आदाब। हस्ब रिवायत गजल उसने छेड़ी का आगाज एक हसीन गीत के तोहफे से हम किया करते हैं, जिसे हम करते हैं अपने उन तमाम चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले अहबाब के नाम कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है और इसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा करती है। तो चलते हैं उस हसीन तोहफे की जानिब, और उसके बाद इंशाल्लाह अपने मेहमानों का तारुफ आपसे होगा। अभी तो धूप निकली हुई है, कभी कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल आती है, और टेम्परेचर 18 सेल्सियस है तकरीबन। आपका तोहफा आपकी मोहब्बत हो, चाहत हो और प्यार के नाम।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। परदेसी मजीद साहब, मुझे लगता है आपके यहाँ इंटरनेट में कोई खराबी है कि आपको मेरी आवाज कट कट कर आ रही है। यहाँ हमारा व्यू मीटर तो बता रहा है कि आवाज बिल्कुल सही पहुंच रही है। कहते हैं कि जुमतुल मुबारक की माफी चाहता हूँ, सेहत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आ सका। खैरियत तो है, बताइए क्या हो गया था आपको। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत से रखे और सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए।
1: On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस 106
8: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहाँ से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
8: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
8: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
10: safewayrider.co.uk।
11: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
13: ओपन 7 days 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
1: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

दोस्तों, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। अभी अभी हमारी बहुत प्यारी सी बहना शहनाज बेडफोर्ड 18 से हमारी बज़्म में शामिल हुई हैं। हम इन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं मिडिल्सब्रा, जहां मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी लिसनर सुमैरा बिटिया की कजन्स, और उनके लिए ये तोहफा आज रखा है। और कहती हैं कि यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, और तुमने बताया कि तुम्हारे यहाँ भी मौसम बहुत अच्छा है, तो न जाने क्यों ये गीत मेरे जहन में आया और इसे मैं तुम सबके नाम करना चाहती हूँ। सुमैरा बिटिया, ब्रैडफोर्ड 3 से जीती रहिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और आपको ये खाना पकाना, बहुत सी खाने की रानी है ना हमारी सुमैरा। सुमैरा, आपकी अल्लाह ताला इस शौक और ज़ौक को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तुम्हारा तोहफा तुम्हारी प्यारी प्यारी कजन्स के नाम मिडिल्सब्रा में। अहले मिडिल्सब्रा को मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। बतौर ख़ास सूफ़ी अब्दुल करीम अली साहब को मेरा सलाम पहुँचे, जिनकी तबीयत नासाज है। बार वो मेरा प्रोग्राम रिकॉर्डेड सुनते हैं, उस पर मैसेज भी देते हैं, मैंने कई बार देखा है उनका नाम। अल्लाह ताला आपको सूफ़ी अब्दुल करीम अली साहब सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। तोहफा लेकर चलते हैं मिडिल्सब्रा, और इसके बाद वक़ार मियाँ आपका तोहफा आपकी नज़र करेंगे, ताकि आप ग्लासगो निकलने की तैयारी कर सकें। ओके,

दोस्तों, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। अभी तशरीफ लाए हैं जनाबे भगत सिंह साहब। अभी मैंने नाम नहीं लिखा उनका, लिख लेता हूँ, भूल जाऊंगा वरना। भगत सिंह साहब लीड से हमारे हमरा मौजूद हैं। हम उन्हें दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आपका गीत हमने नोट कर लिया है, जरूर इंशाल्लाह आपकी नजर करेंगे। साथ ही साथ परदेसी मजीद साहब, आपका गीत भी हमने नोट कर लिया है, जिसे आप हमारे नाम करना चाहते हैं। ये आपकी मोहब्बत है, चाहत है और प्यार है। कहते हैं कि गर्मी लग गई थी जी, बहुत गर्मी हो गई है फिर से। अल्लाह ताला आपको सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। जरा अपना ख्याल रखिए, पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखिए, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। और अब हम चलते हैं क्लास्को की जानिब। रवानगी है हमारे मोहतरम लिसनर वकार साहब, जो हमें वेकफील्ड में अपने अहले खाना के हमराह सुन रहे हैं। उनका तो

तोहफा उनकी नजर करते हैं ताकि वो खैरवाफियत के साथ घर से रवाना हों और अपनी मंजिल मकसूद ग्लासगो स्कॉटलैंड पहुंचे। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड में सुनने वाले तमाम अहबाब को मैं बता दूं कि अगर आप भी हमारी आज की इस बज़्म में शामिल होना चाहें तो तशरीफ ला सकते हैं। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। बहुत आसान नंबर है 3066677। तो अब चलते हैं वेकफील्ड के मेहमान जनाब वकार मियां को रुख्सत करने। अल्लाह आपको और आपके अहल खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी वकार।

दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। वक्त हुआ है हमारे उस सेगमेंट का जिसे आप बेइंतहा पसंद फरमा रहे हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, एक शायर एक गीत दो फनकार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के गीत की निशानदही हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर शकील साहब ने बर्नले से की है। आज के जो शायर हैं उनका नाम है बहुत ही मारूफ मकबूल गुलशन बावरा। गुलशन बावरा ने हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार गीत लिखे जिसे बहुत मुख्तलिफ फनकारों ने मुख्तलिफ मौसीकारों की आवाज में अमर गीतों में शामिल कर दिया। एक चार दिहाई से भी ज्यादा गुलशन बावरा साहब हुकूमत में रहे, या यूं कह लीजिए कि लाखों दिलों पर उन्होंने हुकूमत की अपने खूबसूरत गीतों के जरिए। गुलशन बावरा साहब का असल नाम गुलशन कुमार मेहता था और कलमी नाम उनका गुलशन बावरा था, जो 2008 में हमें छोड़कर इस जहाने पानी से कूच कर गए। लेकिन एक गीतों का ऐसा कीमती सरमाया हमारे हवाले कर गए कि जिसकी वजह से उन्हें ताहयात उम्दा गीतों के शौकीन और अच्छे गीतों के शादाई याद रखेंगे। उनके मकबूल तरीन गीतों में चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, मेरे देश की धरती सोना उगले, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, सनम तेरी कसम, कसमें वादे निभाएंगे हम, वादा करके साजना दीवाने हैं दीवानों को क्या चाहिए। बेशुमार गीत हमारे गुलशन बावरा साहब ने इंडस्ट्री को दिए और उन्होंने मकबूलियत और शोहरत की तमाम बुलंदियां तय की। और लाखों दिलों की धड़कन बने। लेकिन आज हमने जो गीत एक शायर एक गीत दो फनकार मुंतखब किया है और जिसकी निशानदही शकील साहब ने की है, वो 1983 की एक फिल्म थी। फिल्म का नाम था अगर तुम ना होते, और इस फिल्म में एक गीत था जिसने मकबूलियत और शोहरत की तमाम तर बुलंदियां तय की। गुलशन बावरा आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उनके लिखे हुए गीत आज भी हमारे कानों में रस घोलते हैं और दिल की धड़कनों में बसते हैं। फिल्म का नाम था अगर तुम ना होते, 1983 की फिल्म थी। गीत के बोल तहरीर किए थे गुलशन बावरा ने, मौसीकी से सवारा था मुसिकार वक्त R.D. बर्मन ने। बोल कुछ थे हमें और जीने की तमन्ना ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तो आइए एक शायर एक गीत दो फनकार में पहला फनकार तशरीफ ला रहा है जनाब किशोर कुमार। इस गीत को राजेश खन्ना पर पिक्चराइज किया गया और इसने मकबूलियत और शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े।

दोस्तों आप सुन रहे हैं एक शायर एक गीत दो फनकार स्वर्गवासी किशोर कुमार अपनी खूबसूरत मधुर आवाज में उन्होंने इस गीत का टाइटल गाया था जो बहुत मकबूल हुआ। अब वक्त हुआ है दूसरी आवाज आप तक पहुंचाने का, लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब का ये पैगाम आप तमाम सामईन और नाज़रीन तक पहुंचा दूं। यह हुस्न इत्तेफाक है कि आज उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए यही गीत की शायरी मुंतखब की थी। आप ज़रूर पढ़िएगा, इसलिए कि जो गीत होते हैं और जो नज़में या गीत फिल्मों में शामिल किए जाते हैं उनमें बहुत से अशार हज़फ कर लिए जाते हैं, तो ऐन मुमकिन है आपने जो मुंतखब किया है उसमें और शायरी के दूसरे शेर भी शामिल हों जो गीत में शामिल नहीं किए गए। हम मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब को ओल्हम से खुश आमदीद कहते हैं और उनका मोहब्बत भरा सलाम आप तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। साथ ही साथ अब वक्त हुआ है दूसरी हसीन सहरंगेज आवाज़ को आप तक पहुंचाने का। स्वर्गवासी लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ है और फिल्म अगर तुम ना होते में इसे रेखा पर पिक्चराइज किया गया था जो इस फिल्म की हीरोइन थी। ये फिल्म थी 1983 की। बोल गीत के गुलशन बावरा के और मौसीकी से संवारा है आज की हमारी इस महफिल में इस सेगमेंट को R.D. बर्मन ने। तो आइए अब वक्त हुआ है कि हम दूसरी खूबसूरत फनकारा को सुने, लता मंगेशकर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे एक शायर एक गीत दो फनकार, जिसके शायर थे गुलशन बावरा, मौसिकार थे आरडी बर्मन और दो फनकार थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर। उम्मीद है आपने पसंद फरमाया होगा। और अब अभी हमने कॉल रिसीव की जनाबे भगत सिंह साहब की, उन्होंने अपना गीत चेंज कर दिया है और एक और गीत सुनना चाहते हैं जो हमने लिख लिया है उसे काट के, इंशाल्लाह जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। तशरीफ लाए हैं हमारे मोहतरम जनाबे सिराज मुनीर साहब, और सिराज मुनीर साहब हमारी बज में शामिल होते हैं डंकास्टर सिटी से। अहले डंकास्टर सिटी को मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आपकी आमद हमारे प्रोग्राम के लिए बाई से मुसर्रत हुआ करती है। आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं, कबूल फरमाइए। आमद का बहुत शुक्रिया सिराज मुनीर साहब।

0: उस शख्स को फिर दिल में बसाया नहीं करते।
1: वाह वाह, ये शेर बहुत खूबसूरत है और अता कीजिए।
0: एक बार जिसे अपनी निगाहों से गिरा दें, उस शख्स को फिर दिल में बसाया नहीं करते।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: उस शख्स से मिलकर मुझे एहसास हुआ है,
1: उस शख्स से मिलकर मुझे एहसास हुआ है,
0: जो पेड़ बड़े होते हैं साया नहीं करते।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह आता कीजिए भाई, वाह वाह वाह वाह।
0: उस शख्स से मिलकर मुझे एहसास हुआ है,
1: जो पेड़
0: बड़े होते हैं साया नहीं करते। अब मैं बरका चेंज कर रहा हूँ।
1: कर लें।
0: रखते हैं इन्हें हम सदा सीने से लगाकर,
1: रखते हैं इन्हें हम सदा सीने से लगाकर,
0: दुख अपना किसी को भी सुनाया नहीं करते।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: ये खेल मोहब्बत का है फिर सोच लो अरशद।
1: आहा,
0: खो देते हैं सब कुछ यहाँ
1: पाया नहीं करते। भाई आप मख्ताता कीजिए, वाह वाह वाह वाह,
0: ये खेल मोहब्बत का है
1: सोच लो अरशद,
0: खो देते हैं सब कुछ
1: यहाँ पाया नहीं करते। वाह वाह वाह वाह,
0: एक छोटा सा और है।
1: जी जी अता कीजिए।
0: लकीरें अपनी हाथों की मलाई थी कभी हमने,
1: लकीरें अपने हाथों की मिलाई थी कभी हमने,
0: तो सोचा था जुदा अब नहीं होंगे मगर अब याद आता है। लकीरें तो लकीरें हैं, सितारे उनके मिलते हैं, उन्हीं के जोर बनते हैं जो खुदा जिनको मिलाता है,
1: खुदा जिनको मिलाता है। नज़्म बहुत शानदार, वाह वाह वाह वाह।
0: तो बस इतनी सी हुदूद, ठीक है, आप गाने का इंतजार करेंगे?
1: हाँ जरूर इंतजार करें। हैव अ नाइस डे।
0: और
1: लंच कर लिया आपने? खाना तो पका के रख गई होगी।
0: करते करते मेरे सिर के बाल ही सफेद हो जाए।
1: नहीं, हम जल्द ही शामिल करेंगे प्रोग्राम में, बल्कि हो सकता है कि हम अपने भगत सिंह साहब के तोहफे के बाद आपका तोहफा आपकी नजर करें। लेकिन जाने से पहले सुन लीजिए, आपके लिए खादियां गुजरात से परदेसी मजीद साहब ने आपको सलाम कहा है और आपके कलाम को बहुत पसंद किया है।
0: शुक्रिया उनका।
1: ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और आइए दोस्तों, हम आपको लीड्स की खूबसूरत फजाओं में लिए चलते हैं, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम भगत सिंह साहब, और उन्होंने मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामीन नाज़रीन की खिदमत में पेश किया है। इसके बाद हम इन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि इंतज़ार करते करते कभी बाल सफ़ेद ना हो जाएं, अभी काले हैं, अल्लाह इन्हें हमेशा यूं ही काला रखे। यू चौहान साहब, ठीक है, इसके बाद आपका तोहफा आपकी नज़र करेंगे। बेइंतहा शुक्रिया भगत सिंह साहब आपकी आमद का, और इस खूबसूरत गीत को लाखों सामीन और नाज़रीन तक पहुंचाने का। बहुत खूबसूरत गीत का इंतखाब है, अल्लाह आपको खुश रखे।

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। हमारे मोहतरम शकील भाई बनले से हमारे हमराह मौजूद हैं, उनकी कॉल आ गई थी सो मैं गाना वक्त पे बंद ना कर सका, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे बोल सुनने को मिल गए आपको। अब हम इससे पहले कि आपको ओल्डहम लेकर चलें और जनाब अय्यूब चौहान साहब का तोहफा उनकी नज़र करें, आपकी मुलाकात हम शकील भाई से कराते हैं जो हमारे हमराह मौजूद हैं ऑनलाइन। अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: वाला इबादिल्लाहि सालिहीन।
1: कैसे हैं आरिफ भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम है, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है।
1: तो तुम्हारा सुनने वाले को मैं तो से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मैं खालिस लिमिर साहब हैं, नवीद भाई हैं, यहू भाई हैं, सूफी अब्दुल करीम साहब, रिजवा रिजवीन ख्याली है, चौधरी इकसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, तारिक जुल्फी साहब है, हाशमी आसवाल है, भाई प्रवेश साहब, मजीद भाई हैं, अला शफिया नकवी साहब, अलशाह साहब, मबू भलाई साहब को मैं अस्सलाम वालेकुम।
0: आपके तमाम अहबाब तक आपका मोहब्बत भरा सलाम पहुंचा शकील भाई।
1: शुक्रिया। तो एक गजल है ये जावेद कमर लिखने वाले।
0: जी अता कीजिए।
1: कहते हैं मुझसे तो अब ये नजारा देखा नहीं जाता,
0: मुझसे तो अब ये नजारा देखा नहीं जाता,
1: कोई उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं जाता।
0: आहा।
1: उनकी आंखों के रुला देते हैं आंसू मुझको,
0: उनकी आंखों के रुला देते हैं आंसू मुझको,
1: जुल्म इंसान पे होता देखा नहीं जाता।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: फूल सुर्दा है और है सहमी हुई कलियां।
0: आहा।
1: फूल सुर्दा है और है सहमी हुई कलियां।
0: आहा।
1: ऐसा आलम तो चमन का
0: देखा नहीं जाता। वाह वाह वाह वाह।
1: बंद नफरत की सियासत करो अहले वतन,
0: बंद नफरत की सियासत करो अहले वतन,
1: हमसे अब तो ये तमाशा देखा नहीं जाता।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कौन आता है भला बात हमारी सुनने,
0: कौन आता है भला बात हमारी सुनने,
1: दुख किसी से भी हमारा देखा
0: नहीं जाता। वाह वाह वाह वाह।
1: खुद ही जब मंजिले मकसूद का सफर करना हो,
0: खुद ही जो मंजिले मकसूद का सफर करना हो,
1: फिर किसी का भी सहारा देखा नहीं जाता।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। तो आखिरी शेर करते हैं।
0: जी अता कीजिए।
1: खून मजलूम से अखबार हुई सुर्ख कमर। खून मजलूम से अखबार हुई सुर्ख कमर।
0: आहा।
1: खून आलूद सवेरा देखा नहीं जाता।
0: क्या तजवीज़ है, क्या तजवीज़ है, मक्ता अता कीजिए।
1: खून मजलूम से अखबार हुई सुर्ख खून आलूद सवेरा देखा नहीं जाता।
0: क्या दूध की कौड़ी लाए हैं, खून आलूद सवेरा। आ, आ, आ, आ। बहुत बहुत अच्छा इंतखाब।
1: क्या शुक्रिया। तो एक राही कुरैशी है, उनकी गजल है।
0: जरूर जरूर शकील भाई, आपके लिए सलाम पहुंचा है अभी अभी खादिया गुजरात पाकिस्तान से परदेशी मजीद साहब का।
1: शुक्रिया। तो राही कुरैशी कहते हैं।
0: जी अता कीजिए।
1: लहू आंखों में रोशन है ये मंजिल देखना अब के,
0: लहू आंखों में रोशन है ये मंजिल देखना अब के,
1: दियारे गम में क्या गुजरी है हम पर देखना अब के।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। अंधेरा है वही लेकिन रवायत वो नहीं बाकी,
0: अंधेरा है वही लेकिन रिवायत वो नहीं बाकी,
1: चिरागों की जगह हाथों में खंजर देखना अब के।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: सुलगते घर की चंगारी भी बदला लेने वाली है।
0: आहा।
1: सुलगते घर की चंगारी भी बदला लेने वाली है ये मंजर देखना लेकिन संभल कर देखना अब के।
0: क्या बात है, ये मंजिल देखना लेकिन संभल कर देखना आपके। वाह वाह वाह वाह।
1: शिकस्त और फतह की तारीख लिखी जाएगी यूं भी,
0: शिकस्त और फतह की तारीख लिखी जाएगी यूं भी,
1: तही दस्ती से होगा मार मार का सर देखना आपके।
0: आहा।
1: ساری کے سائے بڑھ گئے صحنِ رفاقت میں. شناسائی کے سائے بڑھ گئے
0: صحنِ رفاقت میں.
1: ہماری پشت میں پیوست پیوست خنجر دیکھنا آپ کے.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: زمین کو پھر لہو بخشا گیا ہے بے گناہوں کا.
0: ارے زمین کو پھر لہو بخشا گیا ہے بے گناہوں کا.
1: ستم کے ہر شجر کو پھر سمر بھر دیکھنا آپ کے.
0: ستم کے ہر شجر کو کیا تجبی ہے. واہ واہ آتا کیجیے شیر.
1: زمین کو پھر لہو بخشا گیا ہے بے گناہوں کا. ستم کے ہر شجر کو پھر سمر بھر دیکھنا آپ کے.
0: واہ واہ واہ واہ
1: شکریہ. آخری شیر کہتے ہیں.
0: عطا کیجیے.
1: چھلکنے والی ہے یہ چشم ویراں ایک دن راہی.
0: چھلکنے والی ہے چشم ضیا یہ ایک دن راہی.
1: سلگتے دشت میں کوئی سمندر دیکھنا آپ کے.
0: واہ واہ واہ واہ سلگتے دشت میں کوئی سمندر. کیا تجبیہ عطا کیجیے مقطع.
1: چھلکنے والی ہے یہ چشم ویراں ایک دن راہی. سلگتے دشت میں کوئی
0: سمندر دیکھنا آپ کے. کیا بات ہے, کیا انتخاب ہے شکیل بھائی. اللہ آپ کو خوش رکھے, صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری ڈھیر دعائیں ساتھ ہیں. آپ کے کلام کو بے انتہا واہ واہ لکھ کے سراہا ہے پردیسی مجید صاحب نے اور ان کا سلام آپ تک پہنچا چکے ہیں. بہت بہت شکریہ آمد کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور دوستو آپ تھے شکیل صاحب بنڈلی سے ہماری غزل اس نے چھیڑی کی عزت و توقیر بڑھا رہے تھے. اب حسب وعدہ ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں اولڈہم, جہاں موجود ہیں محمد ایوب چوہان صاحب اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت. آمد کا بہت شکریہ ایوب.

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। आप भी अगर हमारी आज की इस महफिल गजल उसने छेड़ी की जीनत व तौकीर बढ़ाना चाहें, हम आपको दिल की तमाम तर गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुशामदीद कहेंगे। आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो यॉर्कशायर की हसीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में इस वक्त ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है।
1: रेडियो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM DAB+ मोबाइल ऐप and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, जो अपने इख्तितामी घंटे में दाखिल हो चुका है। आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। परदेसी मजीद साहब को फिक्र हुई थी, गलती से मेरा हाथ लग गया था और प्रोग्राम बंद हो गया था, तो मुझे दोबारा पेज ऑन करना पड़ा। मियाँ फिक्र नहीं किया कीजिए, आपकी तबीयत वैसे ही ख़राब है और कमज़ोरी बढ़ जाएगी। अल्लाह आपको हिफाजत से रखे और सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। मुझे इल्म है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तो देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और अब चल रहे हैं हम आपको लेकर बर्नली, जहां हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर शकील भाई ने ये खूबसूरत गीत सुनना चाहा है। एक बहुत खूबसूरत शेर नासिर का मुझे याद आ गया। शकील भाई, आपकी नज़र कर रहा हूँ। आओ कुछ देर रो ही ले नासिर, आओ कुछ देर रो ही ले नासिर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं। तो हाजिर है, आमद का बहुत शुक्रिया, कबूल कीजिए।

रुसु परदेसी मजीद साहब मौजूद हैं और बीते दिनों को याद कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं ड्राइवर भी हूँ, एल्युमिनियम शीशे का कारीगर भी हूँ और बहुत काम किए हैं, बड़ी मेहनत की है, लेकिन अब अल्लाह ताला ने मुझे इस बड़े इम्तिहान में डाला है, पैरालाइज्ड है। मैंने अभी आपसे कहा था, समझाया था कि मायूसी की बातें नहीं करते और अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। देखिए आपके खाने पीने का अल्लाह ताला ने कितना अच्छा बंदोबस्त कर दिया है, किसी को आपका सहारा बना दिया, आपको वक्त पे खाना मिल जाता है और आपके ज़रूरतों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप क्योंकि तने तनहा हैं, आपको वक्त पे खाना मिल जाए। अल्लाह ने इसका वसीला निकाल दिया है और इंशाअल्लाह जो अल्लाह ताला ने असबाब मुहैया किए हैं आपको, उसके लिए बस दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला ये करम फजल आप पर जारी रखे। और नाउमीदी कुफ है। दूसरा ये है कि आपको हर माह बाकायदगी के साथ, जिन साहब ने भी बंदोबस्त किया है आपको, इसका बंदोबस्त हो जाता है, तो इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये उनका कोई एहसान आप पर नहीं है, ये अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है। मैंने आपको बताया था, जिनका कोई नहीं उनका तो खुदा है यारो। और मुझे यकीन कामिल है कि इंशाल्लाह आपको फिर आपके सारा बंदोबस्त हो जाएगा, बस उनके लिए दुआएं किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ही सबब पैदा करता है और आपकी दवाई इंशाल्लाह आपको वक्त पर मिल जाएगी और आपका ये सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहेगा। अब हम चल रहे हैं अहलियाने सब्जाजार, आज हमारी बज़्म की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ लाए हैं जनाबे बाबर तनवीर साहब, जनाबे यासिर तनवीर साहब और जनाबे उवैस तनवीर साहब हमारी बज़्म में शामिल हुए हैं। इंशाल्लाह हम अभी तलाश करते हैं। हमारी तो ख्वाहिश थी कि आप अपनी पसंद का कोई गीत बताते और हम उसे आपकी नज़र करते तो हमें बेइंतहा दिली खुशी होती। और मैं अभी भी मुंतज़िर हूँ क्योंकि अभी जो गीत मैं पेश कर रहा हूँ, ये हमारी एक प्यारी सी बहना है यहाँ ब्रेडफोर्ड 18 से तशरीफ़ लाकर मुझे ढेरों दुआओं से नवाजती हैं और सिर्फ एक दुआ सुनने के लिए वो हमारी बज़्म में आती हैं। उनका कहना यह है कि मेरे अब कोई भी बुज़ुर्ग जिंदा नहीं, आपकी आवाज़ सुनकर और आपसे बात कर इस कदर अपनाइत का एहसास होता है और इस कदर तसल्ली और तशफ़ी मुझे मिलती है कि जब आप दुआ देते हैं तो मुझे लगता है कि कोई बुज़ुर्ग मेरे सर पर मौजूद है। जीती रहो प्यारी बहना, प्यारी बिटिया शहनाज। आज तुमने हमारी पसंद का गीत सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है और कहती हैं कि बस बचपन के दिन याद करती हूँ, गुजरा हुआ अच्छा वक्त पंजाब में जो हमने गुजारा, ऐसा ही होता है, यही इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। मगर याद रखिए, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह बाबा तनवीर साहब, आपने दिल खुश कर दिया। यार हम तो वैसे ही दीवाने हैं अहलियाने सब्जाजार के और आपने मेरी मुश्किल हल कर दी, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज़रूर अभी थोड़ी ही देर बाद हम आपका तोहफा आपकी नज़र करेंगे, तो अपनी प्यारी सी बहना बिटिया शहनाज ब्रेडफोर्ड 18 में जीती रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे और बच्चों की बहारें देखो। ये वो दुआ है जिसके लिए बाकायदगी के साथ शहनाज ब्रेडफोर्ड 18 से हमारी बर्न की रौनक बढ़ाती है। जीती रहो, आमद का बहुत शुक्रिया। मेरी पसंद तो कुछ यूं है, वैसे भी किसी शायर ने क्या खूब कहा है शहनाज, कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। और मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है, माजी की हसीन यादें जिंदा रहने का सहारा बनती हैं और जब आदमी परेशान हो, किसी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, गुजरा हुआ वक्त, अच्छा वक्त बुरे वक्त को टाल देता है। चलें
چلتے ہیں اس گیت کی جانب جو ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے. مجھے یہ گیت بہت پسند ہے اور دل کے بہت قریب ہے اور یادوں سے وابستگی بھی ہے. قبول کرو. جیتی رہو بیٹا.

0: दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको सब्ज़ार लिए चलें लाहौर, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम जनाब यासिर तनवीर, बाबर तनवीर और उवैस तनवीर साहब और उनका तोहफा उनकी नज़र करें, हम आपको लिए चलते हैं स्वीडन, जहां से बहुत दिनों की गैरहाजिरी के बाद नवीद भाई आए हैं। अल्लाह करे कि सब खैरियत हो और खैर की खबर सुनाए। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
0: वाला इबादिल्लाहि सालेहीन। कैसे हैं नवीद? सब खैरियत थी?
1: जी जी, सब खैरियत है भाई। जैसे जैसे मौका मिलता है जरूर हाजिर होते हैं। गैर हाजिरी से हमारा नाम ना खारिज कर दीजिए।
0: चलिए, हाँ, आप तशरीफ लाए हैं, हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर बढ़ गई।
1: शुक्रिया तमाम दोस्तों को, बहन भाई को मेरा सलाम। शकील भाई हैं, मजीद साहब हैं और महबूब भाई हैं, तमाम दोस्तों को एक आजाद ख्याल है। जी, तुझको खबर है हम क्या क्या शोर से दौरा भूल गए। कुछ तुझको खबर है हम क्या क्या शोर से दौरा भूल गए, वो जुल्फ परेशान भूल गए, वो दीपा गलियां भूल गए।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: शौक नजारा क्या कहिए, नजरों में कोई सूरत ही नहीं। शौक नजारा क्या कहिए, नजरों में कोई सूरत ही नहीं। शौक तसव्वुर क्या कीजिए, हम सूरत जाना भूल गए।
0: हम सूरत जाना भूल गए, वाह वाह वाह वाह वाह।
1: शौक तसव्वुर क्या कीजिए, सूरत जाना भूल गए। अब गुल से नजर मिलती ही नहीं, अब दिल की कली खिलती ही नहीं। अब गुल से नजर मिलती ही नहीं, अब दिल की कभी छिलती ही नहीं। फसल धारा रुखसत हो हम लुत्फ से धारा भूल गए।
0: क्या बात है, क्या मुरस्सा इंतखाब है साहब, वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। अब गुल से नजर मिलती ही नहीं, अब दिल की कली छिलती ही नहीं। फसल बहारा रुखसत हो हम लुत्फ से बहारा भूल गए।
0: लुत्फ बहारा भूल गए,
1: सबका तो मदावा कर डाला, अपना ही मदावा कर
0: भूल गए। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, आता कीजिए।
1: सबका तो मदावा कर डाला, अपना ही मदावा,
0: अपना ही नजारा भूल गए। क्या अनोखा ख्याल है।
1: सबके तो गिरेबा सी डाले, अपना ही गिरेबा भूल गए। सबके तो गिरेबा सी डाले, अपना ही गिरेबा भूल गए। ये अपनी वफा का आलम है, अब उनकी जफा को क्या कहेंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या मिसरा है।
1: ये अपनी वफा का आलम है, अब उनकी जफा को क्या कहिए। एक लश्कर जहर आ गई, रखकर नजदीके लगे जहाँ भूल गए।
0: भूल गए, वाह वाह वाह, क्या इंतखाब है, वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया शुक्रिया जैसल भाई। और मेरे अंधेरों पे हंसते हैं अब जला के चिराग। मेरे अंधेरों पे
0: जलते हैं अब जला के चिराग,
1: अब जला के चिराग, जिनको मैंने दिए उम्र भर कमा के चिराग। वो जिनको मैंने दिए उम्र भर कमा के चिराग, खुदाए सुबह जिया कब तलक ये तीरा शबी।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: खुदाए सुबह जिया कब तलक ये तीरा शबी, थकन सी होने लगी है बना बना के चिराग।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, अता कीजिए अता कीजिए।
1: खुदाए सुबह जिया कब तलक ये तीरा शबी, थकन सी होने लगी है बना बना के चिराग। और किसी भी बज़्म में गोया है जब मेरा सूरज, किसी भी बज़्म में गोया है जब मेरा सूरज, के सुनने लगते हैं बात उसकी सर झुका के चिराला।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: शुक्रिया। और बुझा बुझा मेरी आगोश में गिरा आकर, बुझा बुझा मेरी आगोश में गिरा आकर, वो थक गया था जलाते हुए अना के चिराग,
0: वो थक गया था जलाते हुए अना के चिराग। अता कीजिए।
1: बुझा बुझा मेरी आगोश में गिरा आकर, वो थक गया था जलाते हुए अना के चिराग। और अब उसकी मर्जी जहाँ रोशनी लुटाता फिरे,
0: अब उसकी मर्जी जहाँ रोशनी लुटाता फिरे,
1: अब उसकी मर्जी जहाँ रोशनी लुटाता फिरे, कि हम तो बेच चुके हैं उसे बना के चिराग।
0: क्या बात, कि हम तो देख चुके हैं इसे बना के चिराग, वही वाह वाह वाह वाह। अता कीजिए।
1: अब उसकी मर्जी जहाँ रोशनी लुटाता फिरे, हम तो भेज चुके हैं उसे बना के चिराग। और तमाम शब मेरे पहलू में पड़ता गैर की बात, تمام شب میرے پہلو میں کرتا غیر کی بات مجھے جلا لیا کرتا تھا وہ بجھا کے چلا
0: کیا بات ہے مجھے جلا بجھا لیا واہ واہ واہ واہ بھائی واہ واہ واہ واہ
1: تمام شب میرے پہلو میں کرتا غیر کی بات جلا لیا کرتا تھا وہ
0: بجھا کے چلا
1: اور بڑھا رکھا ہے یوں نیوٹن کے قاعدے کا مقام یوں نیوٹن کے قاعدے کا وقار ہوا ہمارے بجھاتی ہے ہم ہوا کے چراغ
0: بھائی واہ واہ کیا تکرار لفظی ہے بھائی واہ واہ واہ واہ
1: ہر عمل کا رد عمل بڑھا رکھا ہے یوں نیوٹن کے قاعدے کا وقار ہوا ہمارے بجھاتی ہے ہم ہوا کے چراغ اور تمہیں یہ غیر حقیقی لگے گا سچ ہے تمہیں یہ غیر حقیقی لگے گا بس سچ ہے کہ روشنی نہیں کرتے ہیں بے وفا کے چراغ
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ
1: شکریہ اور آخری شعر ہے کہ اراج شبد اسی بستی میں ہے پڑاؤ میرا اراج شبد اسی بستی میں ہے پڑاؤ میرا کسی نے لینے ہو لے جائے مجھے مجھ سے آ کے چراغ
0: کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی بہت مرصع کلام منتخب کیا تھا اور وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا اور نوید آپ کے لیے خصوصی سلام بھیجا ہے پردیسی مجید صاحب نے کھاریاں گجرات سے اور کہتے ہیں کہ نوید صاحب پر جرمانہ عائد ہونا چاہیے کہ کیوں غیر حاضر تھے اللہ آپ کو سلامت رکھے صحت سے رکھے اور اپنے عز و امان میں رکھے اللہ حافظ
1: اللہ
0: حافظ
2: ریڈیو آن 14:13 AM DAB پلس موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے دس از بریڈفورڈ ایشین ریڈیو
3: اینڈ دا ونر از
4: اینڈ دا ونر از
5: اینڈ دا ونر از
3: یور بزنس بینگ ہرڈ آن دا ریڈیو
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
8: اوف اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے کیا ہی چوائس ہے آپ کا
9: یہ چوائس ہمارا نہیں یہ تو کمال ہے فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا
8: جو کہ پائیدار مضبوط خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
9: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں
8: فرسٹ چوائس
9: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL
8: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
9: 01274317644
10: کوالٹی ویلیو اسٹائل اینڈ سیکورٹی یور نمبر ون چوائس فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر
11: ارے سنتے ہیں اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے
9: ایسا عمدہ لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں
11: منگنی سالگرہ شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے
9: اور خوشبو لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے
11: منگلا کیٹرنگ 77 Athington Street بریڈفورڈ BD8 ATY
9: ٹیلیفون 01274731555 منگلا کیٹرنگ سروسز ڈاٹ یو کے دلہن وہ جو پیا من بھائے
11: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے
9: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں کنگن کانٹے
11: بالیاں انگوٹھیاں اور ہار
9: جو دلہن کرے سنگھار
11: آج ہی مامو کاکے کی دکان
9: خالص سونے کی پہچان
11: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
9: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے
11: آپ کی شان
9: ہماری آن
11: کوالٹی کی پہچان
9: پاکستان جیولر 1 Duckworth Lane بریڈفورڈ BD95ER 01274491442
11: پاکستان جیولر نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل लो हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
9: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
11: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
9: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
9: 33 वेटली लेन ब्रेडफुट
11: 01274201679.
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफुट में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
9: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफुट, BD8 8AX, फोन ब्रेडफुट 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
0: और आइए दोस्तों, अहलियाने सब्जाजार का तोहफा अब उनकी नजर करें हैं। काफी इंतजार कराया है, मुझे याद आ गया कि सब्जादार की एक रौनक जिसने एक छोटा सा बागीचा लगाया था और अपने गुलशन में कुछ पौधे लगाए थे, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और हमारे प्रोग्राम में बाकायदगी के साथ तशरीफ लाया करते थे। हमारे मोहतरम तनवीर इस्माइल साहब और उनकी शरीक हयात फराह और हमारे प्रोग्राम की जीनत व तौकीर बढ़ाया करते थे, लेकिन अल्लाह की रजा कुछ ऐसी हुई कि तनवीर इस्माइल साहब ये गुलशन में पौधे लगाकर बहुत जल्द अल्लाह के बुलावे पर, क्योंकि पसंदीदा शख्सियत थी लोगों की, अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। जिन्हें अल्लाह ताला पसंद फरमाता है उन्हें अपने पास बुला लेता है। अल्लाह ताला जनाब तनवीर इस्माइल साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके दर्जात में इजाफा फरमाए, मगफिरत फरमाए। सो खानवादाए तनवीर इस्माइल का ये जो मैं अब गीत लगाने जा रहा हूँ, इसी लगाए हुए गुलशन के अब वो तनावर दरख्त जनाब यासिर इस्माइल, बाबर इस्माइल और तनवीर, ओएस तनवीर साहब, बल्कि तीनों भाई नाम यही लगाते हैं कि यासिर तनवीर, बाबर तनवीर और ओएस तनवीर। अल्लाह ताला इन भाइयों में ये मेल और मोहब्बत यूं ही कायम और दायम रखे, इसे नजर बद से बचाए। तीनों भाई भाई तो हैं ही, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के करीबी दोस्त हैं और अल्लाह आपकी ये मुट्ठी यूं ही बंद रखे और वालदा गिरामी मोहतरमा फराह साहिबा के खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आप अगर अपने प्रेस पर मौजूद हैं और वर्कर्स के हमरा मौजूद है उनकी खिदमत में भी, और या अहलियाने सब्जाजार اہل خانہ کے ہمراہ موجود ہیں، ان کی خدمت میں بھی میرا محبت بھرا سلام پہنچے. اللہ تعالیٰ تنویر اسماعیل صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور دوستو، افزازار اہل خانہ کے ہمراہ موجود ہیں، ان کی خدمت میں بھی میرا محبت بھرا سلام پہنچے. اللہ تعالیٰ تنویر اسماعیل صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، جنت

साया आपके सर पर सलामत रखे। तीनों भाई मिलकर अपनी माँ की खिदमत जो करते हो, अल्लाह इसका अजर अता फरमाए। जन्नत का दरवाज़ा तो अब तुमसे रुख्सत हो चुका है। वो शख्सियत मौजूद है जिसके कदमों तले जन्नत है और दोनों कि तुमने खिदमत की है, अल्लाह इसका अजर करीम अता फरमाए। दोस्तों, ये ज़िंदगी है, कोई आता है कोई जाता है, ज़िंदगी रवां दवां रहती है, लेकिन उनकी दुआएं आज भी तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला एक मरतबा फिर मैं अपने सुनने वालों और देखने वालों से दरख्वास्त करूंगा कि तनवीर इस्माइल साहब की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ फरमाइए और उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला आप तीनों भाइयों को नज़र बद से बचाए। आपकी पसंद लेकर हाजिर हूँ। आज आपने आज एक मेरी मुश्किल हल कर दी। बहुत से फ़ोन ऐसे आते हैं, कहते हैं आप अपनी पसंद। अब मेरी पसंद का मसला ये है कि मेरी पसंद औरों की पसंद से ज़रा मुख्तलिफ होती है, लेकिन अगर जो खुद महफिल में शामिल हो उसकी पसंद हो, जैसा कि आज हो रहा है, अल्लाह ताला आप तीनों भाइयों को उम्र खिज़र अता फरमाए। तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए।

आज का प्रोग्राम अब अख्तिताम पजीर हुआ। बेइंतहा शुक्रिया उन अहबाब का जिनकी आमद ने हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए और जिसकी इज्जत तौकीर में इजाफा किया। इख्तिताम बहुत हसीन है इसलिए कि हमारे भाई डॉक्टर सिराजुद्दीन एडवोकेट साहब हमारी बज़्म में तशरीफ लाए और इसकी इज्जत तौकीर में इजाफा किया। गो वक्त बहुत कम है और मुकाबला सख्त है। अल्लाह आपको सलामत रखे, उम्र खिज्र अता फरमाए, अल्लाह ताला आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमाए। ढेरों दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। और चलते चलते मैं चाहता हूं कि ये मुमकिन नहीं है कि खाली हाथ, तो वक्त की मुनासबत को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक बहुत खूबसूरत गीत जो मेरे दिल के बहुत करीब है आपके लिए मुंतखब किया है और आपकी नज़र कर रहा हूं। आमद का बेइंतहा शुक्रिया। उनका जो फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मोहब्बतों के पैगंबर रिफत अब्बास को भी इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह हाफिज़ो नासिर। शब्बा खैर, फी अमानिल्लाह।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
13: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपर ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 8EY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.

0: आप क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो।
1: मैंने तुम्हारे बगैर इतनी खामोशी महसूस की है कि मैं बोलना भूल गया।
0: मैं तुमसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि देखना, हमेशा के लिए खामोश हो जाओगी तुम।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफुट में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team.
11: You're listening to Bradford Asian Radio,
12: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, Bradford, 01274201679।
9: UK।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274306677.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग, आपका दम साज।
13: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स टी रूम 46 अरूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट जी हां छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन VAT बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट महमूद रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 महमूद रिजवी
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.

0: बचपन भूखा हो, रूस की जवानी।
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: You're listening to Bradford Asian Radio.
13: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Brady Muhammad.
1: You're listening to Bradford's Asian
2: number
1: Radio.
2: One Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
10: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
12: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
2: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाए दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

मैं तन्हा था, मंजिल मंजिल भटक रहा था, तन्हाई का बोझ उठाए, दिल में अपना दर्द छुपाए, मैं तन्हा था। यूं ही एक दिन चलते चलते हुस्न का जलवा सामने आया, बेहद रंगे बेहद सादा, सांसों में संदल की खुशबू, उसमें था कुछ ऐसा जादू, यूं मेरे एहसास पे छाया, उसकी नजर से रोशनी लेकर मैंने दिल का शहर सजाया, मैंने रस्मों राह पढ़ाकर अपना उसे महबूब बनाया, मैंने उसमें क्या कुछ देखा, मैंने उसमें क्या कुछ पाया, मैं ये बात बताऊं कैसे, लफ्जों की जंजीरें उसके हुस्न को मैं पहना।

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales
1: team. You're listening to, listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
12: Durood padhti hui ba khabar gayi khushbu. दुरूद पढ़ती हुई बाखबर गई खुशबू, नजर जो आया मदीना उतर गई खुशबू, ख्याल था कि न जाने कहां से आए हुजूर, राहे हबीबे खुदा में बिखर गई।

बात करूंगा अदब से हुदूद के अंदर के खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर नबी का नाम आते ही अंगूठे चूम लेता हूँ के इश्क़े रसूल शामिल है मेरे वजूद के अंदर।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.